वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। सो भगवान लिसन्ड टू द अपील ऑफ कालिया एंड हिज वाइव्स एंड व्हाट डिड द लॉर्ड डिसाइड। हे राजन, जब दीनदयालु दीनानाथ ने ब्याल को अत्यंत बेहाल देखा, तब उसका श्रम दूर कर चतुर्भुज रूप दर्शन दिया। भगवान कृष्ण रिवील्ड ऑन टू कालिया हिज चतुर्भुज रूप, फोर आर्म्स, शंख चक्र गदा पद्म। इस प्रकार कालिया की मीठी वाणी सुनकर दीद बंधु भगवान ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक में अपने चरण सरोज छुआ दिया, अब तुझको ऐसी किसी प्रकार का शोक संताप न होगा, परंतु अब तू इस कुंड का वास छोड़कर रमन कद्वीप को चला जा। सो भगवान कृष्ण हैविंग रिवील्ड हिज चतुर्भुज रूप टू कालिया, ही सेज टू कालिया, यू आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर, यू वुड विद द रेस्ट ऑफ योर फैमिली गो टू द ओशन and take up your abode there. Let this river be used for the animals and the people of the community, of the surroundings. This is their livelihood. So you take your family and go into the ocean. And Bhagwan Krishna और गाय बछड़े और ग्वाल बाल यहां का जल पिया करेंगे, आज से इसका नाम कालिया कुंड होगा। जो पुरुष प्रातः काल उठकर अथवा संध्या समय इस चरित्र का पाठ करेगा, उसको सर्प का भय न होगा। यह कालियादह स्थान मेरे विहार करने का है। जो पुरुष इसमें स्नान कर इस जल से पितृ देवता का तर्पण करेंगे। भगवान कृष्ण ही सेज, ही मेज दैट प्रोनाउंसमेंट दैट एनीवन वुड टेक अ होली बाथ इन दिस रिवर, come and do devotions, offer tarpan to their ancestors, and so they will have nothing to fear. They are no longer afraid of snakes and so on. Vah vrat aur mera pujan karenge, do vrat and do puja, usko ashwamegh yag ka punya hoga aur ant samay param dham ko jayega, arthat फिर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। दिस इज हाउ दैट होली रिवर बिकेम सो सीक्रेट दैट हूएवर विल कम एंड हैव देयर बाथ एंड डू पूजा, डू तर्पण एंड परफॉर्म देयर यज्ञस एंड सो ऑन इन दिस होली प्लेस, दे विल बी फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दे विल नॉट हैव टू कम बैक इनटू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। जिस गरुड़ के भय से रमन वृद्धि को छोड़ के तूने इस दह में आए क्या के वास किया है, गरुड़ तुझको अब न खाएगा, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरा चरण जीव है। नाउ दिस विल क्लारिफाई सर्टेन थिंग्स फॉर अस। व्हाई वाज कालिया in this river? Kalia was hiding.
from whom Kaliya was hiding from Garudji. Garud, the vehicle upon which Bhagwan Vishnu travels. There was a time, long time before this. Garud's food was what? Is what? Snake. The eagles, they will eat snake. So Kaliya was hiding from Garud. And Kaliya got a chance to hide in this pond because a certain rishi had pronounced a shrap on Garud. One time Garudji, because of his massive wings and so on, he disturbed the water where the rishi was sitting, and the water come and splash up on the guru and disturbed his devotion and so. And the rishi pronounced a shrap that whoever caused this, they will not be able to come in this area again. And so Garudji could not go in that part of that river where this pond was. So Bhagwan Krishna says to Kaliya, you have nothing to fear about Garud again. You go in the ocean and live. Garud cannot do you anything.

वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। आर्ट का समय फ्रेंड्स, टाइम फॉर फाइनल आरती। इनवाइट अगेन ऑल दोस हु आर वेल, प्लीज स्टैंड एंड जॉइन विद अस।

भगवान श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, आर शक्ति जगदम्बा माता की जय, सर्व देवता सर्व देवी की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय।

0: जब संकट विकट तब हनुमत किए सब जोग प्रगट।
1: बड़े राम पर जब संकट तब हनुमत किए सब जोग प्रगट।
0: निरंतर करते राम का ध्यान चले बचाने श्री राम के प्राण।
1: भगवान

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: योर नंबर 1 द वन एंड ओनली हिंदू रेडियो स्टेशन रेडियो जागृति 102.7 एफएम

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी

एक बार बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। आरती का समय, फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर आरती। वी इनवाइट दोज हु आर वेल इनफ टू प्लीज स्टैंड एज यू क्लास हैंड्स एंड ग्लोरीफाई भगवान। ओ साजं शवर्ति संयुक्त महिना योजित मया दीपम।

वृंदावन बिहारी लाल की जय। फ्रेंड्स अगेन आई इनवाइट यू टू कीप योर हैंड्स क्लास्प्ड एज़ यू ऑल मेडिटेट अपॉन द लोटस लाइक फीट ऑफ योर गुरुज। वेदर द गुरु इज अलाइव और नॉट, थिंक अबाउट दैट फॉर्म ऑफ द गुरु, मेडिटेट अपॉन हिम, seek his divine blessings and wish all good things for their gurus, for your gurus, wherever he may be.